भक्तं पुष्पांजलिं प्रचुरयामि सुवर्ण पुष्पे सन मंत्र पुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचार पनिवहाश्च सम

0: पहले यहाँ सुंदर यूनुंता एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति
1: अध्यात्म ज्योति।

0: मन शांति आराधना र उपहार का लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स
4: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइन हरुको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्स के किन्नुस।
5: बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर बैंक मुनि संपर्क नंबर 5320411 98020676888।
4: जेजे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदीका हरेक प्रकारका सामग्रीका लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्म

0: गीता ज्ञान,
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।

सूत्र समझदारी को सेतु FM अध्यात्म ज्योति सिल्वर पैलेस विश्वसनीय सुरक्षित र भर पर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामानहरू को लागि सिल्वर पैलेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर पैलेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं पिउखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा

नमस्कार आदरणीय श्रोता, जय श्री फुड्स प्रालीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सर्वमङ्गलममा म सभ्यता तिवारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।

0: कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्राली।

0: इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्रणाली द्वारा उत्पादित माइटी घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्रणाली का उत्कृष्ट उत्पादन
0: आदरणीय श्रोता यहाँ अहिले जयश्री फूड्स प्रणाली को प्रायोजन में रहेको कार्यक्रम सर्वमंगलम में श्री महावीर हनुमान जी का कई भजन सुन्दै हुनुहुन्छ।

0: कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जय श्री फूड्स प्राली का उत्कृष्ट उत्पादन
0: व्यावसायिक संदेश पछि आदरणीय श्रोता कार्यक्रम सर्वमंगलम मा पुनः स्वागत छ यहाँलाई। जय श्री फूड्स प्राली द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम सर्वमंगलम मा यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ श्री महावीर हनुमान जी का केही भजनहरू।

श्री राम जी के दरबार में हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने जब उपहार स्वरूप हनुमान जी को मणियों और मोतियों का हार दिया तो हनुमान जी बड़े ही ध्यान से उस हार के एक एक मोती और मणि में न जाने क्या देखने लगे और फिर कुछ देर बाद उदास होकर उस हार की एक एक मणि और मोती को तोड़कर उसमें फिर से कुछ खोजने लगे। इस पर सीता जी प्रभु राम से नाराज होकर कहने लगी कि एक वानर क्या जाने मोतियों का और मणियों का मूल्य, उसके लिए तो कीमती चीज ही बेकार है। इस पर हनुमान जी सीता जी से बोले, जहां मात सिया संग राम नहीं वहां मेरा कोई काम नहीं, ये हीरे मोती व्यर्थ है माते, बिन आपके इनका दाम नहीं। हरेक श्वास में स्वामी का जिभ्या पर

0: इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्रणाली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्रणाली का

0: इस कार्यक्रम का प्रायोजक
1: जयश्री फूड्स प्रणाली द्वारा उत्पादित माइती घर झलक मधुबन शुभ लगन लगायत का उत्कृष्ट चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि जयश्री फूड्स प्रणाली का उत्कृष्ट उत्पादन।
0: कार्यक्रम सर्वमंगलम यहाँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई ट्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: your travel chuche party.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुनेछ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
5: सम्पर्क नम्बर 5320411 9820076788।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।
6: FM AG

है डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डा आ डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स
4: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
5: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। संपर्क नंबर 5320411 98026788।
4: जेजे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।
6: One oh four eight.

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh 4.8.

0: सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरुको उत्कृष्ट कलेक्शन सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जे जे ज्वेलर्स के किन्नुस
1: जे जे ज्वेलर्स बसंतपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक मुनी
2: संपर्क नंबर 5320-4118-9020-76-888
0: जे जे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान
3: ¶¶

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सदैव।
1: दुनिया की तरह रस्मों की तरह

कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निशुल्क चेकबुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार, गुर्जुको चौक, काठमाडौँ।

0: साबेल चुच्चे पाकी
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्लपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: सौंदर्य कसलाई मन पर्दैन र संस्कार कसले भुल्न सक्छ र सौंदर्य र संस्कार जसले यहाँलाई यहाँको पहिचान गराउने छ।
0: सिल्वर पैलेस प्युखा कर्नर न्यू रोड नेपाली हस्तकलामा समर्पित सिल्वर पैलेस
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: म्यूजिक मस्ती बेस्ट ऑफ नॉन स्टॉप हिंदी रिमिक्स ओनली ऑन FM AJ 104.8 MHz.
1: The following music is a test.

0: ओल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: बोली तेरा वो तो फिल्म याद है खेरी बोली मानो ना
1: मिति गंगबुदी मंगसी

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: ख्वाबों में आने वाली
1: झिन चक चक झिन झिन चक चक झिन
0: दिल को चुराने वाली
1: झिन चक चक झिन झिन चक चक झिन।

0: जाली
1: चक चक जी छिंग चक चक जी
0: मदिरा की छलकी प्याली
1: चक चक जी छिंग चक चक जी
0: महके फूलों की डाली मदिरा की।

0: आहा, आपका जाना पहचाना संगीत गूंजा। और देखिए जाग उठी मधुर मशहूर फिल्म संगीत के बचपन और जवानी की यादें।
1: बहन और भाइयों, और भी कई गड़बड़ें हुई मेरे साथ रेडियो सिलोन में उन दिनों, लेकिन अभी तो मुझसे गीतमाला की छांव कह रही है कि ए भाई चुप कर और मोहम्मद रफी जैसे किसी सुरीले इंसान को बोलने दे। तो लीजिए भाई सुनिए।

0: भाइयों, आप तो जानते ही हैं कि फिल्म में इस गीत को प्यार में डूब कर गाया था शम्मी कपूर ने। तो यहाँ एक छोटी सी बात सुन लें शम्मी जी के बारे में। उस फिल्म कश्मीर की कली के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर शक्ति सामंत की जबानी।
1: अपनी जिंदगी में मैंने ऐसा मर्द दोस्त नहीं पाया, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, जिसके साथ भी उसकी दोस्ती हो जाती है, शमी उसके लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन शमी में एक बहुत बड़ी खराबी है, और वो है हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कर देना। वो खाएगा तो बहुत खाएगा या बिल्कुल नहीं खाएगा, काम करेगा तो बहुत करेगा या बिल्कुल नहीं करेगा। उसकी एक कमज़ोरी भी है, और वो है उसकी दवाइयों का बक्सा। जहाँ भी जाएगा उसे अपने साथ ले जाएगा। सुबह से शाम तक वो 15-20 तरह के टैबलेट्स खाता ही रहता है। मान लीजिए शूटिंग के दौरान में किसी को मामूली सी चोट लग गई, फौरन शमी साहब की दवाइयों का बक्सा आ जाएगा और उसमें से वो तरह तरह की रंगीन गोलियां निकाल कर उस आदमी को खिला देंगे, चाहे उनसे कुछ फ़ायदा हो या ना हो। शमी में एक और बुराई है, और वो है फाइटिंग सीन्स में खुद काम करना। अक्सर फाइटिंग सीन्स के लिए हम लोग डुप्लीकेट्स रखते हैं ताकि खतरे का काम या मुश्किल काम वो लोग करें, लेकिन शमी साहब नहीं मानेंगे, वो हर काम खुद करेंगे। और इस तरह से कभी कांच से अपना हाथ काट लेंगे या फिर कभी चलती जीप से कूदकर अपना पैर तोड़ लेंगे।
0: दोस्तों, शम्मी कपूर की जवानी की उस कांच तोड़ अदा का सबूत मैंने भी देखा था श्रीनगर के एक बड़े महंगे महल जैसे होटल के बड़े दरवाजे का कांच, जिसे शम्मी ने ताव में आकर घूंसा मारकर चकनाचूर कर दिया था। इन्हीं हरकतों की वजह से ही तो शम्मी को टाइटल दिया गया था बागी अदाकार। वैसे फिल्मों में एक बागी संगीतकार भी तो हुआ करते थे, मदन मोहन। उनकी धूमधाम का जिक्र बस अभी आएगा बहनों भाइयों, मगर पहले उनकी नाजुक भावुकता से उभरी हुई एक धुन सुन लीजिए, जो तलत महमूद के गाए हुए सबसे अमर गीतों में शामिल होते हुए भी सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई।

0: फिर वही।
1: इस फिल्म जहां आरा के प्रोड्यूसर थे खुद कैरेक्टर एक्टर ओम प्रकाश। तो बहनों भाइयों जरा मदन मोहन जी की आवाज में सुनिए कि ओम प्रकाश जी से उनका कैसा धूम धड़ाकेदार रिश्ता था।
2: जहारा के बनने के वक्त का वाकया मुझे याद है
3: जी।
2: कि ये मेरे दफ्तर तशरीफ लाए, मुझे कहीं जरूरी काम से बाहर जाना था
3: जी।
2: तो मैंने कहा कि ओम कल बैठेंगे। कहने लगे मदन तुम मेरे काम पर ध्यान नहीं देते।
3: अरे
2: बात तूल पकड़ गई, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में ढोलक उठा ली और ओम ने हथौड़ी।
3: अरे बाप,
2: उनके दोस्तों ने उन्हें पकड़ रखा था और मेरे दोस्तों ने मुझे। मैंने कहा देखो ओम एक लफ्ज तुमने कहा ना तो बैल्कनी से नीचे फेंक दूंगा। कहने लगे कि नीचे पहुंचकर बहुत सी हड्डियां टूटेंगी लेकिन फिर भी कहूंगा यही कि म्यूजिक मदन मोहन का होगा।
1: अच्छा साहब, मदन मोहन ही के स्तर के एक और लाजवाब संगीतकार थे रोशन। मगर रोशन की आदतें मदन से बिल्कुल अलग थीं। मदन भैया का चाल चलन अगर फौजी था तो रोशन भाई हुआ करते थे हंसमुख, खामोश, भावुक, मिलनसार, बिल्कुल उनके एक गीत की तरह, जिसका मुखड़ा अंतरा उन्होंने अपने घर में खुद अपनी ही आवाज में शायद कुछ बीमारी की हालत में गाकर रिकॉर्ड करवाया था।
4: इस

याद आया आपको ये किस फिल्म का गीत था? नई उम्र की नई फसल और सन 64 की छांव का अगला गीत मैंने उसी फिल्म से चुना है आपके लिए।

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
4: जेजे ज्वेलर्स
5: प्रस्तुत छ
6: जेजे ज्वेलर्स।
5: जेजे ज्वेलर्समा छ
6: सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
7: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
8: सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
6: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

0: है।
1: अरे भाई नींदें तो मेरी गायब हो गई थी मेरे उस रेडियो सैलून के दूसरे सफर में। शुक्र है मेरी झुंझलाहटें कुछ कम करने के लिए शिव कुमार सरोज अपनी तबीयत ठीक ठाक करके लौट आए थे कोलंबो, तो मुझे एक दोपहर कुछ घंटों की छुट्टी मिल गई और मैं कोलंबो से कुछ दूर उस जगह जा पाया जहां मैंने सुना था कि हाथियों का बड़ा सुंदर डांस होता है। तो मैंने जाकर देखा वो डांस और अगले दिन स्टूडियो जाकर मैंने आधे घंटे का एक बड़ा मजेदार प्रोग्राम रिकॉर्ड किया हाथियों के उस नाच पर। मगर एक दिन बाद जब वो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ तो उसे शिव कुमार सरोज ने सुना और वो दौड़ते हुए आगे मेरे पास और बोले, अमीन भाई ये आपने क्या कर दिया, हाथी तो निशान है, सिंबल है यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी का और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि रेडियो सैलून पर हाथी का कोई गीत बजना ही नहीं चाहिए बल्कि हाथी का नाम भी कहीं नहीं आना चाहिए। अब तो अमीन भाई आप पर कड़ी कार्रवाई चल सकती है बच्चिए। भाई मैं तो एकदम डर गया साहब, मगर जब दो रोज तक मुझे गवर्नमेंट का कोई बुलावा नहीं आया ना तो मैंने सोचा कि चलो वाकई बच गए। शायद मेरे प्यारे शहर कोलंबो के लोगों को ये ख्याल ही नहीं आया होगा कि हिंदी में एलिफेंट को हाथी कहते हैं। मगर साहब अगले दिन जब मैं रेडियो सैलून की कमर्शियल सर्विस के स्टूडियो की तरफ जाने लगा ना तो भाई मेरे छक्के छूट गए। क्यों और कैसे ये मैं अभी कुछ मिनट बाद आपको बताऊंगा, बड़ी मजेदार कहानी है। 1964 की छाओं में छुपे दो और गीतों और सालाना संगीत सीढ़ी की कुछ झलकों के बाद बताऊंगा। पहले सुनिए उस साल के छुपे रुस्तम संगीतकार जीएस कोहली की गजब की धुन जिसे लोकप्रियता की धूप

0: जरा दिल थाम कर बैठिए, आ रही है एक और फैंटास्टिक धुन जो सालाना संगीत सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई।
1: ओ नदी रे एक कथा।

तर्ज तो यही थी जो हेमंत कुमार ने अपनी बंगाली फिल्म नीलाकाशेर नीचे में दी थी 1959 में। अपनी लाजवाब बंगाली धुनों को बाद में हिंदी फिल्मों में ढालना ये हेमंताई नहीं सचिन देव बर्मन साहब भी अक्सर किया करते थे। बहरहाल ओ नोदी रे का हिंदी वर्जन आया था 1964 की फिल्म कोहरा में, आपको याद नहीं है ना, और वही है आज का अगला छांव में छुपा हुआ गीत।

0: बेकरार तो भाई गीतमाला की छाव में का ये वॉल्यूम नंबर 22 हो रहा है, क्योंकि अभी तो अरे 1964 के टॉप गीतों की कई झलकें बाकी हैं साहब। जैसे नंबर 11 पर दूर की आवाज।
1: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू
2: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: गुड़िया मोटर रेस तो कोई लता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू
2: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
0: और नंबर 10 पर था संगम का गीत, जो गीतमाला की छाओ में सुनने वाले मर्दों के लिए बिल्कुल नहीं था साहब।

0: नंबर 9 पर गूंजा फिल्म वो कौन थी का वो गजब का गीत, जो असल में इससे कहीं ऊपर वाली पायदान पर बजने के काबिल था, मगर गीत की झलक से पहले इसकी बेमिसाल हीरोइन साधना से सुनिए गजब के डायरेक्टर राज खोसला के बारे में।
1: वो फिल्में क्या बनाते हैं, शायरी करते हैं, सेलुलॉइड पर रोमांस करते हैं, जब तक हीरोइन को खूब ग्लैमराइज ना कर लें और उसे रोमांटिक ना बना दें, वो फिल्म ही नहीं बना सकते। उन्हें म्यूजिक का इतना सेंस है कि क्या बताऊं। आपको शायद नहीं मालूम कि वो खुद भी काफी अच्छा गाते हैं, और जब मूड में होते हैं तो अपनी फिल्मों के गीत बड़े मजे में गाकर सुनाते हैं।
2: जी हाँ, मैंने सुना है कई बार।
1: एक अच्छा डायरेक्टर होने के अलावा वो अपनी फिल्म की एडिटिंग भी इतनी अच्छी कराते हैं कि आदमी कहीं पल भर भी बोर नहीं होता।
0: बहनों और भाइयों, आजकल 2011 के शुरू में जब मैं ये वॉल्यूम नंबर 22 रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राज खोसला इस दुनिया से कब के जा चुके हैं। अब तो जब भी उनकी याद आती है ना, तो सन 64 की 8वीं पायदान का ये गीत याद आ जाता है।

0: और वार्षिक नंबर 8 पर बजी थी कवि नीरज की वो यादगार कविता जो ढली थी फिल्म नई उम्र की नई फसल में।
1: सपन झरे फूल से।

बहनों और भाइयों, आइए फिर एक बार गीत माला की छाव में अच्छा बहनों भाइयों, अब जरा जल्दी से लौटिए मेरे रेडियो सलोन के दूसरे सफर की उस खौफनाक कहानी के उस मोड़ पर जब मैंने समझा कि भाई आज तो मेरे लिए कयामत का दिन है। हुआ यूं कि हाथियों के डांस वाला प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करने के दो रोज बाद जब मैं रेडियो सिलोन के हिंदी सर्विस के दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि बाहर दो पुलिसमैन हाथ में बंदूक लिए खड़े थे। मैं तो कांपने लगा साहब कि अब तो वो मुझे अरेस्ट ही करने वाले हैं। एक पुलिसमैन ने मुझे आंखें फाड़ कर ताका और गरज कर कहा, शो योर एंट्री पास। तो हम मैंने डरते डरते अपना पास जेब से निकाल कर उन्हें बताया तो वो जरा नरम होकर बोला, ओके ओके गो इन। अंदर जाकर मैंने वहां के कुछ रेडियो वाले साथियों से पूछा कि ये क्या हो रहा है भाई, ये आर्म्ड पुलिसमैन बाहर क्या कर रहे हैं। तो पता चला कि कल रात किसी ने या तो गलती से या फिर जानबूझकर रेडियो सिलोन के एक और स्टूडियो में जलता हुआ सिगरेट छोड़ दिया था जिससे छोटी मोटी आग लग गई थी। इसीलिए आज चारों तरफ सिक्योरिटी पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया है। ओहो हो, तब जाकर मैंने चैन की सांस ली कि चलो सचमुच बच गए, क्योंकि मैं तो उस आग वाले स्टूडियो में कभी गया ही नहीं था, वरना मैं पहले तो बेकार में जेल जाता और फिर रेडियो सिलोन वाले मेरे प्रोग्रामों को बैन कर देते और टूट जाता वो प्यार का रिश्ता जो मेरा रेडियो सिलोन से था और रेडियो सिलोन का।

और बहनों और भाइयों, आप तैयार हो जाइए 1964 की एनुअल संगीत चूड़ी की 5 सबसे कामयाब गीतों की झलकें याद करने के लिए। पायदान नंबर 5 पर वो देखिए, आई मिलन की बेला, मगर मिलन की उम्र भी आई क्या?

1964 की सालाना गीतमाला की पायदान नंबर 4 पर भी इसी फिल्म का गीत था और फिल्म के शानदार प्रोड्यूसर जे ओम प्रकाश और बड़े ही गुणी डायरेक्टर मोहन कुमार भी फिल्मी दुनिया की उन सैकड़ों हस्तियों में शामिल हैं जिनके लिए उनके सारे फैंस ही नहीं बल्कि सभी दोस्त भी हमेशा यही दुआ मांगते हैं।

और साहब अब आया वो गीत जो दो वर्षों की लोकप्रियता में बढ़ जाने के बावजूद उस साल गीतमाला की वार्षिक पायदान नंबर 3 तक पहुंच गया। फिल्म का नाम

और 1964 की दो टॉप की पायदानों पर राज किया था एक ही गजब की फिल्म संगम के दो हिट गीतों ने। तो आइए गीतों से पहले दोनों के लिए एक साथ बजा दें गीतमाला की सालाना संगीत जोड़ी की चोटी का बिगुल। अब इन दो गीतों के गीतकारों के नाम तो हर गीत के लेवल पर अलग अलग छपते थे मगर कभी ये नहीं बताया जाता था कि किस गीत की धुन शंकर ने बनाई है और किसकी जयकिशन ने।

0: इसी के बारे में मैंने एक बार हसरत जयपुरी साहब से पूछा था, तो वो बोले,
1: आशिकाना रंग की धुने जितनी भी बनाई और बनाते रहे वो थे जय किशन साहब, और फलसफा ढंग के रंग में, क्लासिकल ढंग के रंग वो थे हमारे शंकर जी।
0: तो बहनों भाइयों, आप ही सोचकर अब बताइए कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर की धुन शंकर और जय किशन में से किसकी थी, और साल के टॉप गीत नंबर 1 की धुन किसने बनाई होगी?
2: मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
3: नहीं कभी नहीं।
2: दो नदी

बहनों भाइयों, आपने अमीन सायानी के साथ सुनना शुरू किया है गीत माला की छाओ में। और बहनों भाइयों जरा देखिए, यही बात 1964 की छाओ से चुना हुआ आज का पहला गीत भी किस खूबी से कह रहा है शायद आपसे।

जिन्हें मिलकर या जिनसे फोन पर बात करके मैं अपनी मुश्किलें अपना दुख कम कर दिया करता था। तो एक सुबह मुझे फोन पर खबर मिली कि मेरे वो प्यारे दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। और बहनों भाइयों, वो सिर्फ मेरे ही दोस्त नहीं थे बल्कि उनका गहरा नाता रेडियो और संगीत के तमाम कदरदानों से भी था। नाम था उनका विजय किशोर दुबे, वही दुबे साहब जिन्होंने रेडियो सिलोन के लाजवाब प्रोग्रामों को जन्म दिया, वहां की रिकॉर्ड लाइब्रेरी को संवारा, उसके बाद बंबई आ गए, बरसों तक मेरे साथ रेडियो सिलोन की एजेंसी के लिए प्रोग्राम रचाते रहे और फिर एशिया की सबसे बड़ी ग्रामोफोन कंपनी से जुड़कर पहले HMV और फिर सारे गामा के मशहूर नामों को लाजवाब फिल्मी और गैर फिल्मी संगीत से सजाया। एक फिल्म भी प्रोड्यूस की थी विजय किशोर दुबे साहब ने, आशिक, लेकिन अभी तो उनके जाने के गम से सुरों के सहारे राहत पाने के लिए हमें सुनना होगा एक और अमर गीत जो 1964 की सालाना पायदानों तक नहीं पहुंच पाया मगर जो मेरे दिल में भी तब से अब तक बसा हुआ है।

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: श्रेष्ठ टेलरिंग
1: चीर परिचे यहाँ श्रेष्ठ टेलरिंग
2: अध्यात्म ज्योति 104.5

तीसरा अध्याय गृध्रासुर का मारा जाना। एक दिन एक असुर ने गृध्र का रूप बनाया, कुटी से बाहर खेलते हुए गणेश जी के पास जा पहुंचा। उसने इधर उधर आहट लेकर देख लिया कि उनके क्रियाकलाप को देखने वाला कोई नहीं है, तो सहसा उन्हें अपनी भयंकर एवं विशाल चोंच में दबाकर आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर उड़ चला। तभी किसी कार्यवश माता पार्वती जी बाहर आईं, तो उन्होंने पुत्र को कहीं ना देखा। इससे हे गणेश पुकारती हुई व्याकुलता से इधर उधर खोज करने लगी। आकाश में उड़ते हुए गृध्रासुर की चोंच में दबे हुए गणेश जी ने माता की पुकार सुनी तो असुर के मस्तक पर मुष्टि प्रहार कर बैठे। बस एक ही प्रहार ने असुर का मस्तक चूर्ण कर दिया और वह धरती की ओर गिरने लगा। गणेश जी सुखपूर्वक उसके मुख में बैठे रहे। माता ने गृध्र सहित अपने पुत्र को आकाश से गिरते देखा तो उस ओर दौड़ पड़े। इतने में ही राक्षस धराशायी हो गया और माता पार्वती जी ने तुरंत ही भगवान गणेश जी को उनकी चोंच से निकाल कर अपनी गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। शेमासुर एवं कुशलासुर का मारा जाना। शेम और कुशल नाम के दो असुर बड़े बलवान थे। वे अवसर देखकर आश्रम में घुस आए, किंतु माता पार्वती को बालक के पास बैठी देखकर दबे पाव एक कोने में जा छिपे। तब माता उन्हें पालने में लिटाकर किसी कारणवश बाहर चली गईं। तब दोनों असुर पालने के पास आए और उसमें से बालक को उठाने लगे। तभी भगवान गणेश जी ने अपने पांव चलाए तथा लीला पूर्वक एक एक पदाघात दोनों पर कर बैठे। बस एक एक बार में ही दोनों असुर दूर जाकर इतने जोर से गिरे कि उनकी हड्डी पसलियों का ही चूर्ण हो गया। उनके हृदय फट चुके थे और रक्त वमन करके शांत हो चुके थे। माता आई तो यह दृश्य देखकर आवाक रह गई। उनकी समझ में नहीं आया कि यह दोनों यहाँ किस प्रकार आए और कैसे मारे गए। माता पार्वती जी ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और गणों को आदेश दिया कि उन असुरों के शरीर उठाकर सुदूर अरण्य में फेंक दें। क्रूर नामक असुर की मृत्यु। तीन राक्षस मारे जा चुके थे, किंतु बालक का बाल बांका नहीं हुआ। इससे असुरों में शंका तो उत्पन्न हो गई थी कि बालक में कोई विशेषता अवश्य है, फिर भी वे उसकी विशेष सामर्थ्य से अपरिचित ही थे। अतः मारने के अनेक उपाय सोचने लगे। राक्षस दल में क्रूर नामक एक असुर अत्यंत ही क्रूर था। उसे यथा नाम तथा गुण कहना अनुपयुक्त नहीं होगा। एक दिन उसका भी काल खींच ले गया उसे गौरी नंदन गणेश के पास। वह माता पार्वती जी मंदिर में पूजन करने गई थी और बालक गणेश मंदिर के बाहर खेल रहे थे। उन्होंने सोचा इससे अच्छा अवसर और कब आएगा। वह भी एक मुनि बालक का रूप बनाकर उनके साथ खेलने लगा। गणपति जी को उसके क्रियाकलाप देखकर हंसी आ गई, किंतु वह मूड उस गूढ़ हंसी का अर्थ ना समझ सका। वह कभी उनका कंठ पकड़ता तो कभी उनके केश खींचता। आरंभ में तो भगवान गणेश जी ने उसका अधिक प्रतिरोध नहीं किया, किंतु जब असुरों के आघातों में प्रबलता आने लगी तब उन्होंने उसे पकड़कर बलपूर्वक गला दबा दिया। मंदिर से बाहर निकलती हुई माता गौरी ने पुत्र की यह चेष्टा देखी तो आशंकित हो उठी कि यह मुनि कुमार का गला अधिक ना दबा दे, इसीलिए उसे बचाने को दौड़ पड़ी। किंतु तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और वह छद्म वेश छोड़कर अपने असुर रूप में प्राणहीन रूप से धरती पर गिर चुका था। माता पार्वती जी ने उसे देखकर अत्यंत व्याकुल होकर उन्होंने अपने पुत्र गणेश को उठाकर गोद में ले लिया। व्योमासुर वध। यह असुर झंझावात का रूप रखने में सिद्ध हस्त था, इसीलिए दैत्यराज के दरबार में इसका बड़ा सम्मान था।
वह भी गणेश जी का वध करने के विचार से त्रिसंध्या क्षेत्र में रह रहा था। एक दिन भगवान गणेश जी का उपवेशन संस्कार होना था। माता पार्वती जी के साथ निवास करने वाली ऋषि पत्नियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराए और तब आदि देवगणाध्यक्ष का पूजन पुण्य वाचन कार्य संपन्न हुआ। उस समय सभी देवताओं ने वहां उपस्थित होकर इन श्री मयूरेश्वर गणेश का पूजन किया। तदउपरांत ऋषि विप्र आदि ने उन्हें आशीर्वाद दिए। यही अवसर व्योमासुर ने अपने लिए अधिक उपयुक्त समझा। वह आश्रम के सामने खड़े हुए वृक्ष पर बैठकर जब उसे हिलाने लगा तब पत्तों के हिलने से धीरे धीरे झंझावात का रूप ले लिया। प्रबल आंधी के कारण किसी को कुछ भी दिखाई ना देता था। उसी समय उस असुर ने भगवान गणेश जी को पकड़कर मारने का प्रयत्न किया, किंतु भगवान गणेश जी द्वारा किए गए प्रत्याघात से वह स्वयं ही शत विशत होकर गिर पड़ा। आंधी का वेग रुका तो सभी ने देखा कि एक भयंकर राक्षस मरा पड़ा है। तभी भयातुरा माता पार्वती जी ने अपने पुत्र को अंक में ले लिया और दुग्धपान कराने लगी। सभी उपस्थित देवता और ऋषि गण बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देने लगे। राक्षसी शत महिषा का वध। व्योमासुर की एक विकराल मुख वाली बहन थी। उसका समस्त शरीर ही भयंकर एवं विशाल था। उसे ज्ञात हुआ कि प्रिय भाई व्योमासुर मारा गया है तो वह क्रोध से कांपने लगी। उसने निश्चय किया कि भाई की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेगी, इसलिए 16 वर्षीय किशोरी का रूप धारण किया और माता पार्वती जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर बैठ गई। माता पार्वती जी ने उसे कोई देवकन्या समझा, इसलिए बड़ा सत्कार किया। भोजन आदि से संतुष्ट कर उसे रात्रि में अपने ही पास सुलाया, परंतु भगवान गणेश जी उसकी समस्त गतिविधि पर दृष्टि रखे हुए थे। माता पार्वती जी को घोर निद्रा में पड़ी देखकर वह उठी और मयूरेश्वर को स्पर्श करने लगी। तभी सहसा उन्होंने उस राक्षसी के कान नाक पकड़ लिए। राक्षसी ने अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया, किंतु छोड़ने की अपेक्षा पकड़ बढ़ती गई। पर्वत के समान दबाव से छटपटाती हुई राक्षसी चित्कार कर उठी। उसे सुनकर माता पार्वती जी ही नहीं, अन्यत्र सोई हुई ऋषि पत्नियां भी दौड़ी चली आईं। उन सब ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु बालक ने राक्षसी के नाक कान इतनी तीव्रता से मसले कि प्राणों के साथ ही शरीर से पृथक हो गए। अब उसका आसुरी रूप प्रत्यक्ष हो चुका था। सभी महिलाएं उसे देखकर भयाक्रांत हो उठी। माता बालक को उठाकर दुग्धपान कराने लगी और भी अनेक राक्षसों का वध। तदउपरांत एक एक करके अनेक असुर वहां आते रहे और प्राण गंवाते रहे। इस प्रकार कर्मठ, तल्प, दुदुम्भी, अजगर, शलभ, नुतुर, मत्स्य, शैल, कर्दम आदि अनेक महाबली राक्षस मारे गए। जितने भी राक्षसों ने अपनी यह लीला समाप्त की वे सभी भगवान के हाथ से मरने के कारण मोक्ष के अधिकारी हुए। वस्तुतः वे सभी असुर अत्यंत सौभाग्यशाली थे। भगवान को मारने के विचार से भी आकर उन्हीं के धाम को प्राप्त हो गए थे। धीरे धीरे मयूरेश 5 वर्ष के हो गए। तरह तरह की बाल क्रीड़ाएं। अब माता पार्वती पुत्र अनेक बालकों के साथ क्रीड़ाएं करने लगे। कभी गाते, कभी नाचते, कभी हंसते बोलते थे। एक दिन मध्याह्न काल होने पर भी उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हुआ। माता पार्वती जी किसी कार्य में व्यस्त थीं और वे शुद्धा आतुर हुए सोचते थे कि भोजन कैसे और कहां से प्राप्त हो। जब कोई उपाय समझ में नहीं आया तब वे महर्षि गौतम की कुटी पर जा पहुंचे। वह कुटी बहुत निकट ही थी। ऋषि पत्नी भोजन बनाती हुई किसी कारणवश उठकर पाकशाला से बाहर निकल आई। अवसर देखकर भगवान गणेश जी ने पाकशाला में जाकर
पके हुए भोजन का पात्र उठाया और चुपचाप बाहर निकल आए। साथी बालकों ने पूछा, क्या है? उन्होंने कहा, भोजन है, भूख लगी है, इसीलिए उठा लाया हूँ। खेलते हुए बहुत देर हो गई, पहले खा लें तब पुनः खेलेंगे। यह कहकर उन्होंने अन्न पात्र का अन्न सभी बालकों में बराबर बांट दिया तथा अपना भाग स्वयं ले लिया। सभी ने तृप्त होकर पुनः खेलना आरंभ कर दिया। इधर ऋषि पत्नी ने पाकशाला में जाकर देखा कि अन्न पात्र नहीं है। वे विस्मित चित्त से महर्षि के पास जाकर बोले, नाथ, पाकशाला में अन्न पात्र नहीं है, अभी बलि वैश्वदेव कर्म भी नहीं हो पाया था। महर्षि को भी आश्चर्य हुआ, पाकशाला में गए और सब और दृष्टि फिराई, अन्न पात्र कहीं नहीं था। तब बाहर निकलकर उन्होंने देखा, उमापुत्र के साथ कुछ मुनि बालक खेल रहे थे और खाली अन्न पात्र उनके निकट पड़ा था। उनको यह समझते देर ना लगी कि इन्हीं में से किसी ने अन्न पात्र चुराया और मिलकर खा लिया है। उन्होंने ध्यान लगाकर भगवान गणेश जी की करतूत जान ली तो क्रोधित होकर बोले, अरे तू शिव पार्वती का पुत्र होकर ऐसा दुष्कर्म करता है, और हम तो तुझे पर ब्रह्म परमात्मा समझते थे। इतना कहकर उन्होंने मयूरेश्वर का हाथ पकड़ा और माता पार्वती जी के पास ले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, शिवे, आपका यह पुत्र आए दिन उपद्रव करता रहता है, आज तो इसने हमारा अन्न पात्र ही चुरा लिया। बलि वैश्वदेव आदि भी ना हो पाया था कि समस्त अन्न इसने अन्य बालकों के साथ बैठकर खा लिया। माता पार्वती बोली, महर्षि, मैं भी इनके क्रियाकलापों से त्रस्त हो रही हूँ। इनके उत्पन्न होते ही असुरों के उपद्रव आरंभ हो गए। बालकों के साथ ही खेल खेल में उलझ जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता। अब यह घरों में घुसकर भोजन भी चुराने लगा है, इसीलिए इसे दंड देना पड़ेगा। यह कहकर माता ने रस्सी लेकर पुत्र के हाथ पांव बांधने आरंभ किए। महर्षि ने कहा, मातेश्वरी, इसे बांधने की अपेक्षा स्नेह पूर्वक समझाओ। महर्षि चले गए। माता ने पुत्र को दृढ़ता से बांधकर कोठरी में बंद कर दिया। फिर बाहर आकर विश्राम करने लगी तो ऐसा अनुभव हुआ कि पुत्र गोद में ही खेल रहा है। फिर बाहर की ओर देखा तो पुत्र को बालकों के साथ खेलता पाया। माता को आश्चर्य हुआ, उसने कोठरी खोलकर देखा तो हाथ पांव बंधे हुए मयूरेश्वर पूर्वत बैठे हैं, उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। माता पार्वती ने हृदय कठोर बनाकर पुनः किवाड़ बंद कर दिए, क्योंकि बालक को सीख देने के लिए कुछ डराना तो था ही। वे कुछ देर के लिए ऋषि पत्नी के पास जा बैठी, किंतु पुत्र के कोठरी में बंधा पड़ा रहने के कारण उनका मन ना लगा। वे अपने आश्रम को लौटी तो मार्ग में देखा कि मयूरेश्वर खेल रहे हैं। माता ने पुत्र का दुख भूलकर उसे स्नेह पूर्वक पुकारा, पुत्र, घर चलकर जलपान कर लो। बालक ने उत्तर दिया, माता, यहाँ तो मयूरेश्वर नहीं है, उन्हें तो आपने कोठरी में बंद कर रखा है। माता को ध्यान आया और वह दौड़ी दौड़ी आश्रम में पहुंची। उन्होंने कोठरी खोलकर पुत्र को देखा, वह रोता रोता सो गया था। माता ने बंधन खोलकर उसे हृदय से लगा लिया और स्तनपान कराने लगी। उधर महर्षि गौतम ने वहां से लौटकर देव पूजन आरंभ किया, किंतु यह क्या, उनके मंदिर की सभी मूर्तियां गणेश रूप में दिखी। कहने लगे, देखो मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मयूरेश्वर को सामान्य बालक के समान पकड़कर उनकी माता के पास ले गया, जिन्होंने उन्हें लताड़ते हुए कठोर रस्सी से बांधकर घर में बंद कर दिया। वस्तुतः यह हमारा सौभाग्य ही था कि साक्षात पर ब्रह्म ने अपने मित्र मंडली के साथ भोजन ग्रहण कर लिया। वे भगवान मेरा अपराध क्षमा करें। यह कहकर महर्षि श्री गणपति के ध्यान में मग्न हो गए और उनकी पत्नी अहिल्या पुनः भोजन बनाने में व्यस्त हो गई।
बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।

चौथा अध्याय वक्रासुर का वध। भगवान गणपति की आयु का छठा वर्ष चल रहा था, तभी एक दिन भगवान शिव जी के आश्रम में भगवान विश्वकर्मा का आगमन हुआ। भगवान मयूरेश्वर खेलने के लिए गए थे और लौट आए, तभी भगवान विश्वकर्मा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु आपके प्रकट होने का समाचार जानकर दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भगवान गणेश बोले, बड़ी कृपा की आपने, किंतु यह तो बताइए कि मेरे लिए उपहार क्या लाए हैं। भगवान विश्वकर्मा ने विनीत भाव से उत्तर दिया, यद्यपि आप चराचर नाथ के लिए मैं क्या उपहार दे सकता हूँ, तथापि सभी शत्रुओं के संग्रामार्थ तीक्ष्ण परशु, पाश, पद्म और अंकुश लाया हूँ, जो प्रस्तुत है। वह कितना सुंदर उपहार है, यही तो चाहता था मैं। असुरों के उपद्रव बढ़ रहे हैं, देवगण उनके भय से त्रस्त हुए छिपे हैं और रमानाथ गंडकी नगर में बंदी जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में असुरों से युद्ध भी करना पड़ेगा। भगवान मयूरेश्वर ने भगवान विश्वकर्मा को समझाया। भगवान विश्वकर्मा उनकी परिक्रमा करके चले गए। भगवान गणेश जी उन दिव्यास्त्रों के चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन उग्रेशन द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य वहां आया, जिनका नाम वक्रासुर था। उसने भगवान गणेश जी को देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। तभी उन्होंने भगवान विश्वकर्मा प्रदत्त अंकुश का भयंकर प्रहार कर दैत्य की जीवन लीला समाप्त की और स्वधाम में भेज दिया। उपनयन संस्कार भगवान मयूरेश्वर का। सातवें वर्ष भगवान गणपति का उपनयन संस्कार हुआ। जोर शोर से तैयारी आरंभ हुई। सभी देवता, यक्ष, किन्नर, चारण एवं 88,000 ऋषियों ने उस उत्सव में भाग लिया। भगवान शिव जी ने सबका सहर्ष स्वागत किया। संस्कार के समय जब मुनि गण मंत्र पाठ करने लगे, तभी वहां कृतांत और काल नामक दो भयंकर राक्षस मदमदाते हाथी का रूप बनाकर आ गए। उन्होंने वहां उपद्रव आरंभ किया तो शिवगणों ने उन्हें रोका, किंतु वे शिवगणों को भी मारते मारते मंडप के निकट जा पहुंचे। उन्होंने स्तंभों में टक्कर मारकर गिराने की चेष्टा की तो भयभीत हुए मुनि कुमार, देवगण एवं ऋषि पत्नियां वहां से प्राण बचाकर भागने लगे। उनका यह कौतुक देखकर बटु गणेश जी ने एक हाथी की सूंड पकड़कर उमेठ डाली और फिर उस पर घोर मुष्टि प्रहार किया, जिससे पीड़ित होकर चित्कार करता हुआ वह हाथी तीव्रता से पीछे को मुड़ा कि तभी उसकी जोर की टक्कर अपने साथ ही दूसरे हाथी से हुई। उसके कारण दूसरा हाथी भी आहत हो गया। तब विनायक भगवान ने उस पर भी मुष्टि

प्रहार किया, जिससे वह व्याकुल हो गया। किंतु भगवान गणेश जी ने उन्हें संभलने का अवसर ही नहीं दिया। वे उन पर प्रहार करते जा रहे थे, जिससे उनके अस्थि पंजर बिखर गए और वे प्राणहीन होकर धरती पर जा गिरे। यह देखकर सब आश्वस्त हुए और बालक के प्राकर्म की प्रशंसा करने लगे। तदुपरांत मयूरेश्वर का विधिवत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। देवताओं, मुनियों आदि ने उन्हें अनेक प्रकार के अलंकार भेंट किए और फिर सब अपने अपने स्थानों को लौट गए। तदुपरांत उनका विदा ध्यान आरंभ हुआ। गणेश जी के मुख से होने वाला सहस्वर वेद गान सभी को मुग्ध करता था। पशु पक्षी आदि भी उसे सुनकर आनंदित होते थे। राक्षस नूतन वध। उग्रेशन ने भगवान गणेश जी की हत्या करने के लिए नूतन नामक एक विकराल राक्षस को आज्ञा दी। उसने त्रिसंध्या क्षेत्र में पहुंचकर अत्यंत भयंकर हिंसक पशु का रूप बनाया और जहां भगवान गणेश जी द्वारा देवगान चल रहा था, वहां पहुंचकर सिंहनाद करने लगा। उस नाद ने वातावरण को अत्यंत विशुद्ध कर दिया, जिससे पर्वत भी कांप उठा और गुफाएं फटने लगी। राक्षस के तीन मुख, चार कान, चार सींग, पांच नेत्र, दो पूंछ और आठ पांव थे। वह भगवान गणेश जी के सामने आकर नृत्य करने लगा। भगवान गणेश जी उठकर उसकी ओर बढ़े तो वह तुरंत उड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार वह कभी उनके पास आ खड़ा होता और कभी उड़कर अदृश्य हो जाता था। उसके इस उपक्रम से सभी भयभीत थे। भगवान गणेश जी समझ गए कि राक्षस का अंत समय आ गया है। वे उठकर उसे पकड़ने को दौड़े तो वह वन की ओर भागा। गणेश जी ने उसके पीछे पीछे चलते गए। इसी बहाने से वह उन्हें गोर अरण्य में ले गया और फिर गर्जन करता हुआ आकाश में उड़ चला। उसकी गर्जना से धरती कांप उठी, नक्षत्र टूटने लगे, मेघ बिखर गए। फिर वह जैसे ही धरती पर आया, वैसे ही मयूरेश्वर ने पाश फेंका, जिसके कारण उसकी समस्त माया नष्ट हो गई और वह उसमें बंध कर धराशायी हो गया। उसका विशाल शरीर चूर चूर हो गया तथा प्राण पलायन कर गए। अंडा से निकले पक्षी के वध का वर्णन। एक दिन आम के वन में भगवान गणेश जी अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वे वृक्षों से आम के फल गिरा गिरा कर खाने लगे। कुछ मुनि कुमार परस्पर व्यंग करते हुए एक दूसरे पर फल फेंकने लगे। एक फल उचट कर अंडे की रक्षा करती हुई स्त्री के सर पर जोर से जाकर लगा। वह स्त्री क्रोध पूर्वक आकर कहने लगी, जिसने यह फल फेंक कर मुझे मारा है, वह बालक कहाँ है? उसे देखकर भगवान गणेश जी उस वृक्ष के कोटर में जा छिपे। वहां उन्होंने एक चमकता हुआ श्वेत अंडा उठाकर देखा तो वह फूट गया और उससे एक विशालकाय पक्षी निकल आया। उसके विशाल पंख और नीले कंठ थे। उसके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उसके पंख हिलाते हुए पृथ्वी कांप उठी और समुद्र शुभ हो गया। वह विशाल पक्षी भागते हुए मुनि कुमार पर पंखों से प्रहार करने लगा। यह देखकर भगवान गणेश जी ने शीघ्रता से कोटर से कूदकर उसके पंख पकड़ लिए। पक्षी भी प्रबल था, उसने किसी प्रकार अपने पंख छुड़ा लिए। अब भगवान गणेश जी और पक्षी में युद्ध छिड़ गया। अंत में वह अत्यंत पराक्रमी पक्षी उनके मुष्टि प्रहार से मारा गया। यह देखकर वह स्त्री गणेश जी की स्तुति करती हुई बोली, प्रभु, मैं महर्षि कश्यप की भार्या विंता हूँ। उनका यह पुत्र शिखंडी मयूर आपके सेवक रूप में समर्पित है। महर्षि ने पहले ही बता दिया था कि जो इस अंडे को फोड़ेगा वही इसका स्वामी होगा। मेरे जटायु, शयन और संपाति तीनों पुत्रों को क्रद्रु पुत्र ने नागलोक में बंदी बनाया हुआ है। कृपा कर उन्हें मुक्त करने का कष्ट करें। भगवान गणेश जी ने आश्वासन दिया, माते, आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्रों को छुड़ाने का शीघ्र ही प्रयत्न करूंगा।
तदुपरांत उन्होंने मयूर से कहा, तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई इच्छित वर मांग लो। मयूर बोला, प्रभु मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए। हाँ, एक इच्छा और है, वह यह कि आपके नाम से पूर्व मेरा नाम लगाया जाए, लोक में आपकी प्रसिद्धि मयूरेश्वर के नाम से हो। ऐसा ही हो कहकर भगवान गणेश जी मयूर पर चढ़कर अपने आश्रम पर पहुंचे। माता पार्वती ने सब वृतांत सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुईं। ऋषि कुमार भी उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने घरों को चले गए। अश्वासुर का वध। भगवान गणेश जी की आयु 11 वर्ष की हो रही थी। आम्रवन में विद्यमान सरोवर के किनारे मुनि कुमारों के साथ भगवान गणेश जी खेल रहे थे। तभी उग्रेशन के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस विशालकाय घोड़े के रूप में आकर उपद्रव करने लगा। उसके भयंकर आकृति और आक्रमण चेष्टा देखकर कुछ मुनि कुमार सरोवर में कूद पड़े, कुछ वृक्षों पर चढ़े और कुछ प्राण लेकर कहीं अन्यत्र जा छिपे। तभी भगवान गणेश जी उस पर वज्र तुल्य मुष्टि का प्रहार किया। पहले तो उसने सामना किया, किंतु बार बार के मुष्टि का प्रहार में उसका शरीर अत्यंत पीड़ित हो गया, तो वह प्राण बचाने के लिए सरोवर में जा कूदा। यह देखकर भगवान गणपति ने भी छलांग लगाई और उस घोड़े को जल में ही जा दबोचा तथा मर्दन कर डाला और उसका मृत शरीर उछालकर सरोवर से बाहर फेंक दिया। राक्षस को मरा देखकर सभी मुनि कुमार प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। बोलिए, भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।

0: मन शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने
3: पांचवा अध्याय नागलोक पर विजय। अश्वासुर के मरने पर वे सब अधिक हर्षित होकर जल क्रीड़ा करने लगे। वहीं कुछ नाग कन्याएं भी सरोवर के दूसरी ओर आकर जल क्रीड़ा करने लगी। तभी उनकी दृष्टि मुनि कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुए भगवान गणेश जी पर पड़ी। उन्होंने निकट आकर उनका परिचय पूछा। भगवान गणेश ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने कुछ समय को घर चलने का आग्रह किया। वे बोले, माताजी मेरी प्रतीक्षा करती होंगी, इसीलिए आपके साथ नहीं चल सकता। मुझे घर से निकले हुए बहुत विलंब हो गया है। नाग कन्याओं ने बहुत आग्रह किया तो वे चुपचाप उनके साथ चल दिए। मुनि बालकों को उनके जाने का पता ना चला। वे समझते रहे कि भगवान गणेश जी हमारे साथ ही हैं। मार्ग में भगासुर ने उन बालकों को छल से मारने का उपक्रम किया, किंतु सर्वत्र भगवान मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से राक्षसों को मार डाला। माताजी को भी यही प्रतीत हुआ कि गणेश घर पर आ गए। उन्होंने उनके प्रतिरूप को भोजन कराया और तब वे अपनी शैया पर जाकर सो गईं। नाग कन्याएं उन्हें पाताल लोक में स्थित अपने भवन में ले पहुंची। वहां उद्वर्तन आदि करके उन्हें स्नान कराया और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण कराकर अनेक प्रकार से उनका पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए निवेदन किया कि प्रभु आप कुछ दिन यहाँ निवास करने की कृपा करें। जब गणेश जी ने पूछा आपके पिताजी कौन हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, हम नागराज वासुकी की पुत्रियां हैं। वे आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्न होंगे। यह कहकर नाग कन्याएं उन्हें अपने पिता के पास ले गईं। वह नागराज वासुकी अत्यंत चमकते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक में अद्भुत मणि एवं रत्न मुकुट और कंठ में दिव्य मणियों का हार सुशोभित था। उन्हें देखते ही गणराज शीघ्रता से उनके फन पर चढ़कर नाचने लगे। फन के हिलने से मणि का प्रकाश हिला और साथ ही तीनों लोक भी हिल उठे। इस प्रकार वासुकी को दंड देकर उन्होंने उस सर्पराज को कंठाभरण के समान गले में धारण कर लिया। इस कारण उस दिन से उनका नाम सर्पभूषण या नागभूषण हुआ। सर्पराज के पराभव का समाचार समूचे नागलोक में फैल गया। उनके भाई सहस्त्र फनधारी शेष जी ने सुना तो वे अत्यंत क्रोधित होकर सोचने लगे, मेरे भाई वासुकी को पराजित करने वाला कौन प्रकट हो गया। शेषनाग दौड़े हुए गए और उन्होंने भगवान गणपति पर आक्रमण कर दिया। भगवान गणपति ने भी उनका सामना किया। स्मरण करते ही मयूर उपस्थित हो गए तथा गणेश जी उस पर चढ़कर घोर युद्ध करने लगे। शेषनाग के साथ असंख्य नाग थे। मयूरों ने उनमें बहुतों को पंख की मार से मारा, बहुतों को आहत किया और कुछ नागवीरों को मुख में लेकर उदरस्थ कर लिया। यह देखकर शेषनाग अत्यंत कुपित हुए। उनके मुखों एवं नासाओं से विष की भयंकर लपटें निकलने लगी। मयूर उस विष ज्वाला में झुलसकर मूर्छित हो गया। उसके गिरते ही मयूरेश अत्यंत क्रोधित हुए और उछलकर शेष नाग के सिर पर चढ़े और अपना भार बढ़ाकर फणों पर नृत्य करने लगे। भार असहनीय था, शेषनाग उसे सह ना सके और आंतरिक पीड़ा से कराहते हुए रक्त वमन करने लगे। उस स्थिति में भगवान गणेश जी ने उन्हें रस्सी के समान अपनी कटी में लपेट लिया। नागराज शेष आश्चर्य में डूब गए, सोचने लगे अवश्य ही ये है जगदीश्वर हो सकते हैं, अन्यथा और कौन मेरी यह दशा कर सकता था। उन्होंने तुरंत ही मयूरेश के समक्ष पराजय स्वीकार की और उनकी स्तुति करते हुए बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। भगवान गणेश बोले, तुमने संपाति जटायु और शयन को कैद कर रखा है, उन्हें छोड़ दो और मेरे पास लाने को कहो। शेष ने अपने सेवकों को वैसा करने का आदेश दिया। कुछ देर में तीनों वहां ले आए गए। इतने में मयूर की मूर्छा दूर हो गई थी और वह भगवान गणेश जी के निकट ही बैठा था। तभी संपाति आदि तीनों ने अपने बड़े भाई मयूर को प्रणाम कर माता की कुशलता का समाचार पूछा और फिर भगवान गणेश जी की आज्ञा से मुक्त होकर मयूरेश के साथ ही चल दिए। मुनि कुमारों ने मयूर वाहन गणेश जी को आते देखकर कोलाहल किया, मयूरेश आ गए, मयूरेश आ गए। जिसे सुनकर माता पार्वती जी ने सोचा कि मेरा बालक तो घर में सो रहा है, यह कौन सा मयूरेश आया। उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो वहां जितने भी बालक थे वे सब मयूरेश ही दिखाई देने लगे। यह क्या, वहां एक नहीं सैकड़ों मयूरेश थे। त्रिसंध्या क्षेत्र से भगवान शिव जी का प्रस्थान। मयूरेश भगवान गणपति की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उग्रेशन द्वारा भेजे हुए समस्त राक्षस उनके द्वारा मारे गए थे, इसी से वे बहुत व्याकुल था। इस पर भी जब उसे यह ज्ञात हुआ कि भगवान गणेश ने नागलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली है, तब तो वह बहुत ही चकित और भयभीत हो गया। इधर भगवान शिव माता पार्वती ने विचार किया कि हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बहुत बढ़ गए हैं, इस कारण पुत्र की सुरक्षा पर अब अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अच्छा हो कि यहाँ से अन्यत्र चलकर रहा जाए, क्योंकि हमारे कारण यहाँ के निवासी ऋषि मुनियों को भय और आतंक का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उनके जाने की बात सुनकर मुनियों को बड़ा दुख हुआ। वे नहीं चाहते थे कि भगवान शिव कैलाशपति, माता पार्वती और भगवान गणेश जी वहां से जाएं।

0: सुनकर मुनियों को बड़ा दुख हुआ। वे नहीं चाहते थे कि भगवान शिव कैलाशपति, माता पार्वती और भगवान गणेश जी वहां से जाएं। कृष्ण ने कमलासुर नामक अपने अत्यंत पराक्रमी वीर को उन्हें मार डालने के लिए भेजा, जो कि 12 अक्षौहिणी चतुरंगिणी दैत्य सेना के साथ मार्ग में ही आ डटे। शिवगणों ने आकर उनकी सूचना दी और कहा कि अच्छा हो कि हम आगे ना बढ़े और पीछे लौटकर असुरों की गतिविधियों पर दृष्टि रखें। भगवान गणपति ने कहा, यदि पिताजी आज्ञा दें तो मैं अकेला ही उस समस्त 12 अक्षौहिणी सेना को भस्म कर डालूं। पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें असुरों से बचाव नहीं करना है, उनका संहार करना भी अभिष्ट है। शिवजी ने मयूरेश को आज्ञा दी, पुत्र अपने साथ इन गणों को भी ले जाओ, हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें विजय प्राप्त हो। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती भी अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखने के लिए साथ चल दिए। कमलासुर का वध। कमलासुर ने देखा कि भगवान गणेश स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचा अब इसे शीघ्र ही वश में कर लिया जाएगा, परंतु जो ही उसकी दृष्टि भगवान गणेश जी के पीछे पीछे आने वाले शिवगणों पर पड़ी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। ना जाने कहां से इतना जन समुद्र उमड़ा चला आ रहा था। सामना होते ही दोनों पक्ष की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। असंख्य राक्षस मारे गए और कुछ शिवगण भी धराशायी हुए। तभी मयूर ने कमलासुर के अश्व पर चंचु प्रहार किया, इस कारण उसका अश्व धराशायी हो गया। तभी वह असुर संभल कर आकाश में उड़ने लगा। उसने क्रुद्ध होकर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। इधर मयूरेश ने भी घोर बाण वर्षा से ही उसका उत्तर दिया। राक्षस ने अपनी माया फैलाई, जिसे मयूर ने सहज में ही नष्ट कर दिया और फिर उसे अपनी माया दिखाई। असुर जिधर देखता उधर मयूरेश ही दिखाई देने लगे। दश दिक्षु मयूरेशम ददर्श कमलासुरः विस्मिताच्छाद नयने हृदि तम परिदृष्टवान। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो अपने हृदय में भी मयूरेश के ही दर्शन होने लगे। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और अपना वश ना चलता देखकर रण क्षेत्र छोड़कर भाग निकला। देवताओं ने यह देखा तो वे उसे पकड़ लाए और बोले, राक्षस तू जाता कहाँ है? कायरों के समान भागकर दैत्य कुल को अपयश का भागी ना बना, युद्ध कर। विवश कमलासुर पुनः युद्ध करने लगा। उसने घोर गर्जना की और अनेक प्रकार तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहार करने लगा। उसने पुनः विविध भांति की मायाएं रची, किंतु मायानाथ के समक्ष उसकी एक भी ना चली। समस्त मायाएं देखते ही देखते विलीन हो जाती। अंत में मयूरेश ने त्रिशूल से उसके मस्तक पर प्रहार किया, जिससे मस्तक कटकर भीमा नदी के दक्षिणी तट पर जा गिरा। राक्षसों की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी। सर्वत्र मयूरेश्वर का जय घोष हो रहा था। प्रसन्न हुए उमा महेश्वर ने पुत्र का अभिनंदन किया और देवगण एवं मुनि गण प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। भगवान विश्वकर्मा ने उपस्थित होकर वहीं मयूरेश क्षेत्र का निर्माण किया। सुंदर नगर बसाया गया तथा सभी के रहने की समुचित व्यवस्था की गई। शिव पार्वती के लिए एक सुंदर भवन बनाया गया, उसमें उन्होंने भगवान मयूरेश्वर गणेश जी के साथ निवास किया। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश।
1: पहले सुनते हुए FM अध्यात्म ज्योति 104.8

छठा अध्याय नंदी का पराभव। एक दिन भगवान शिवजी ने मस्तक से चंद्रमा उतार कर रख दिया था, जिसे लेकर भगवान गणेश जी बालकों के साथ खेलते हुए कुछ दूर चले गए। भगवान शंकर ने चंद्रमा को ना देखकर गणों से उसके विषय में पूछा तो वे बोले, प्रभु, उसे तो आपके पुत्र उठा ले गए हैं। हमने समझा कि आपकी आज्ञा से ही ले जा रहे होंगे, इसीलिए उन्हें टोका भी नहीं। भगवान शिवजी ने एक गण को आदेश दिया, जाओ उससे चंद्रमा ले आओ। गण ने जाकर भगवान मयूरेश से चंद्रमा देने को कहा तो वे बोले, अभी तो इसके साथ खेल रहा हूँ, बाद में दे दूंगा। उसने लौटकर भगवान शिवजी को उनका उत्तर बता दिया तो उन्होंने कई गणों को एक साथ भेजते हुए कहा, यदि वह चंद्रमा दे दे तो ठीक, अन्यथा उसे यहाँ ले आओ। शिवगणों ने गणेश जी से चंद्रमा मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। इस पर गणों ने कहा तो स्वयं अपने पिताजी की सेवा में उपस्थित होकर कह दे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत महिमामयी माता शिवा का पुत्र हूँ, तुम जैसे सामान्य लोग मुझे कैसे ले जा सकते हैं। यह कहकर उन्होंने दीर्घ निश्वास छोड़ा, जिससे विवश हुए शिवगण वायु में पत्तों के समान उड़ते हुए शिवजी के समक्ष जाकर गिरे। उनकी दशा देखकर भगवान शिवजी को क्रोध आ गया। उन्होंने प्रमथादि गण को आज्ञा दी, जाओ गणेश को पकड़ लाओ। प्रमथादि गण ने आज्ञा पालनार्थ गणेश जी से जाकर कहा कि मयूरेश्वर आपके पिता बुलाते हैं, तुरंत चलिए। इस पर अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। गणों ने कहा, हम आपको बलपूर्वक ले चलेंगे। भगवान गणेश जी ने उनका उपकर्म देखा तो उन्हें मोहित कर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। अब वे वन वन में जाकर उनकी खोज करने लगे। उन्हें कभी तो भगवान गणेश जी दिखाई दे जाते और कभी दौड़ते हुए अदृश्य हो जाते। इस प्रकार वे जब अधिक थक गए तब भगवान गणेश जी एक स्थान पर जा बैठे और गणों की पकड़ में आ गए, किंतु उन्होंने अपना भार अधिक बढ़ा दिया। गणों ने उन्हें बांधकर ले जाने का प्रयत्न किया, किंतु वे उन्हें उठा ही नहीं सके। बहुत प्रयत्न करने पर भी असफल रहने पर उन्होंने शिवजी से कहा, भगवान, हमने उन्हें लाने का बहुत प्रयत्न किया किंतु मिलकर भी ना उठा सके, इसीलिए अपनी असफलता पर हमें स्वयं लज्जा आती है। शिवजी हंसे। उन्होंने नंदीश्वर को बुलाकर कहा, नंदी, आश्चर्य है कि अकेला गणेश इतना भारी हो गया है कि उसे यहाँ ले आने में कोई भी सफल नहीं हुआ। अच्छा, अब तुम जाकर इसे साम दाम दंड भेद के नीति के साथ लेकर आओ। भगवान शिवजी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर चले और मुनि कुमारों के साथ खेलते हुए गणेश जी से जाकर बोले, गणपते, आपके पूज्य पिताजी बुलाते हैं, इसीलिए आपको शीघ्र वहां जाना ही होगा। उन्होंने अस्वीकृति सूचक सिर हिलाया तो नंदीश्वर बोले, यदि स्वेच्छा से ना चलोगे तो मैं बलपूर्वक ले चलूंगा। मुझे सामान्य गणों के या प्रमथादि के समान ना समझना। नंदी का अहंभाव देखकर उन्हें हंसी आ गई और तब उन्होंने तीव्र वेग से निश्वास छोड़ा। फिर क्या था, नंदीश्वर की जोर की एक पटक लगी और गहरी चोट के कारण उनको मूर्छा आ गई। जब चेत हुआ तो उठकर शिवजी के पास जाकर कुछ कहना ही चाहते थे कि उनकी दृष्टि शिवजी की गोद में बैठे गणेश जी पर गई। उनके पास चंद्रमा नहीं था, वह तो शिवजी के भाल पर ही सुशोभित था। लज्जित नंदी जी ने भगवान शिवजी से निवेदन किया, प्रभु, आपके यह पुत्र आपके ही समान महिमावान है, आज से हम इन्हें भी अपना स्वामी मानते हैं।
तभी समस्त शिवगण उनकी स्तुति कर जय घोष करने लगे। भगवान गणेश्वर, गणपति, गणराज की जय, गणेश की जय, मयूरेश्वर की जय हो। इंद्र का गर्व खंडन। मयूरेश की 13वीं वर्षगांठ थी। गौतम आदि ऋषियों ने वहां आकर इंद्रयाग कराया। तभी वहां कल विकल नामक दो राक्षस आकर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे। उन्होंने भैंसे का प्रचंड रूप धारण किया हुआ था। गणराज ने उनके मस्तक पर वज्र के समान मुष्टि प्रहार किया, जिससे वे अत्यंत व्याकुल होकर धरती पर गिर गए और रक्त वमन करते हुए यह लीला से मुक्त हो गए। इंद्रयाग में भगवान गणेश जी ने देवराज इंद्र की उपेक्षा कर उन असुरों को मारा था। पहले तो इंद्र अपनी उपेक्षा का कारण ना समझ सके, किंतु असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और उन्हें भगवान मयूरेश्वर की स्तुति कर प्रसन्न किया। भगवान गणराज की बारात की तैयारी। भगवान गणेश जी 15 वर्ष के हो गए। इस आयु तक वे अनेकों राक्षसों का संहार कर चुके थे। इस कारण उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। उनके अद्भुत कर्मों को देखकर देवगण प्रसन्न हो रहे थे। उनकी विवाह योग्य अवस्था देखकर जग जननी माता पार्वती जी ने एक दिन भगवान शिव जी से निवेदन किया, प्रभु गणेश अब विवाह योग्य प्रतीत होते हैं, इसीलिए कोई सुंदर सुशील एवं गुणवती कन्या देखकर इनका विवाह कर देना चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा, प्रिय मैं भी यही सोचता था, परंतु यह बाधा सम्मुख है कि इसके समान गुण वाली कन्या की खोज कहाँ की जाए। यह विचार चल ही रहा था कि महर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए वहां आ पहुंचे। भगवान शिव और माता शिवा ने उनका अत्यंत स्वागत सत्कार कर बैठने को श्रेष्ठ स्थान दिया। तभी भगवान शिव जी ने कहा, देवर्षि आज तो आपके दर्शन बहुत समय के पश्चात हुए हैं। नारद जी बोले, हाँ प्रभु कुछ इधर आना ही नहीं हुआ। फिर आप तो त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे, सहसा ही उस स्थान को छोड़कर यहाँ आ गए। ब्रह्मदेव ने आपके यहाँ आने की बात मुझे बताई तो सेवा में उपस्थित हो गया। इसी प्रकार वार्तालाप चलने लगा। तभी भगवान शिवजी बोले, मुनिवर मयूरेश अब विवाह योग्य प्रतीत होते हैं, इनके अनुकूल कोई गुणवती कन्या बताने की कृपा कीजिए। देवर्षि बोले, ब्रह्मा जी ने इसीलिए तो मुझे यहाँ भेजा है। उनकी दो कन्याएं हैं, सिद्धि और बुद्धि, सब प्रकार से सुयोग्य, अत्यंत सौंदर्यमयी और गुणों के कहने ही क्या। मेरा निवेदन है कि गणेश जी के लिए आप उन दोनों कन्याओं को स्वीकार करने की कृपा करें। शिव शिवा दोनों ही प्रसन्न हुए। विवाह की तिथि निश्चित हुई और दोनों ओर से निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे। सर्वत्र आनंद छा गया। देवगण, ऋषिगण, शिवगण और मुनि कुमार सभी प्रसन्न हो उठे। समय पर वर यात्रा की तैयारी आरंभ हो गई। बारात बड़ी विचित्र थी। सभी देवता अपने अपने अद्भुत वाहनों पर सवार होकर चल दिए। इंद्रदेव ऐरावत पर, भगवान शिवा शिवजी नंदी पर तथा भगवान गणेश जी मयूर पर बैठे थे। पवन देव ने पुष्पों का यान जैसा बनाया और उस पर बैठकर उड़ चले। समस्त बाराती समुदाय मस्ती से झूम रहा था। यह वर यात्रा गंडकी नगर की ओर जाने वाले मार्ग से जा रही थी। मध्य में 7 करोड़ दैत्यों का एक शिविर लगा था। वर यात्रा के विशाल जनसमूह को देखकर असुरों को कोतुल हुआ। बोले, कौन हो तुम लोग, कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो। समूह में से कुछ ने बताया कि मयूरेश क्षेत्र में रहते हैं, ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाह है, वहां बारात लेकर जा रहे हैं। असुर उदंड और युद्ध प्रिय थे। बोले, दैत्यराज उग्रेशन की आज्ञा है तुम्हारे पास, क्या तुम नहीं जानते कि उनकी आज्ञा के बिना कोई जनसमूह इधर से उधर हलचल नहीं कर सकते।
चाहे वह वर यात्रा हो या तीर्थ यात्रा।